हमें दाल समुद्र का किसी अकल से इसमें का था किसी या आज नगंगार बचा रहे हैं